It's Pink Fee on East FM, Kenya's premier Asian mix, and that's the wonderful voice of Atif Aslam. आज ऐसा लग रहा है हम आतिफ असलम का बर्थडे मना रहे हैं बिना बर्थडे का. ठीक है, तो थ्री स्टेटमेंट्स आप मुझे बताओ, इसमें से कौन सा सही है और कौन सा बकवास. ओके, द फर्स्ट वन, द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 0.2 मिलीग्राम्स ऑफ गोल्ड. इज दैट ट्रू और फॉल्स? ओके, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स रियल गोल्ड. अब भी मेरे के वो ना बिजनेस प्लान सूझ रहा है. नॉट इवन गेटिंग देयर, लेट इट बी. सेकंड वन, इफ यू स्वॉलो च्युइंग गम इट टेक्स 7 years टू डाइजेस्ट. इज दैट ट्रू और बकवास? थर्ड वन, लाइटिंग इज हॉटर देन द सरफेस ऑफ द सन. इज दैट ट्रू और बकवास? नाउ ऑल यू हैव टू डू इज गिव मी अ कॉल 0711 046 106, और यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 0701 106 106. दिस इज ईस्ट एफएम, केन्यास प्रीमियर एशियन मिक्स. 90s car rewind.

are talking about healing on Hack It Like Mom today. And how does true healing or real healing happen? It's by forgiving your parents and for letting it be or letting them be if they couldn't cope up or be the best versions of being parents to you. Okay. Second one, forgiving the connections, you know, the people who actually walked out of your life at certain point. It could be your friends, your lovers, your spouses, your connections at work, and they decided to leave you abruptly or pre-planned, whatever it is. Let it go. Let them be. Forgive them. That helps in your true healing. Third one, the video, the lady says that forgiving the strangers or people in your life who hurt you. It could be anybody. People hurt you knowingly, unknowingly, and it kind of takes so much out of you as a person. You keep that regression, you keep that hatred or that grudge in your heart and saying, you know, oh my God, this person did this to me. People will keep doing. That's how this world works. Probably you do it too. Maybe not knowingly, unknowingly bhi aapse bhi ho jata hoga. But अगर आपको किसी ने हर्ट किया है जिस तरीके से भी फॉरगिव देम उनको फॉरगिव करके आपका दिल हल्का होगा आपको हीलिंग मिलेगी एंड द फोर्थ वन इज व्हाट शी सेज इज नॉट बीइंग 100% एज पर योर एक्सपेक्टेशन एज अ पर्सन वी एक्सपेक्ट सो मच आउट ऑफ अस टू बी अ परफेक्ट परफेक्ट पर्सन परफेक्ट इंडिविजुअल नहीं भाई हमको एक परफेक्ट बीवी बनना है मुझे एक परफेक्ट हस्बैंड बनना है एक परफेक्ट पेरेंट बनना है एक परफेक्ट यू नो स्पाउस बनना है जो भी है यू नो एक परफेक्ट लाइक काम पे हमको एक परफेक्ट स्टाफ बनना है हमको प्रूव करना है कि हम एकदम परफेक्ट है बिजनेस चला रहे तो मेरे को एक परफेक्ट बिजनेस मैन ऐसा नहीं होता है अगर आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस रीच नहीं की है तो इट्स ओके फॉरगिव योरसेल्फ टू फॉर जस्ट बीइंग what you are and trying your best. All that forgiveness helps you in healing. And all this will only happen if you don't pretend. This is what my final verdict is. Don't pretend. हम कभी कभी क्या करते हैं ये चीज़ों का pretend करते हैं चलो इसको माफ़ कर दिया पर दिल से नहीं किया अंदर ही अंदर हम उसको नफरत कर रहे हैं चलो उसने हमको hurt किया मैंने माफ़ कर दिया but no, you've not done that from inside your heart. If you have to not pretend, but do it genuinely, if you really, really want to heal yourself.